0: अरे कविता भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।
4: विश्वगुरु भारत जी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक प्रसारित होउछि 110.4 मेगाहर्ज जोगे आज बुधवार 1948 शताब्द वैशाख मास 23 दिन इंग्राजी मई 13 तारीख 2026 मसीहा श्रोतबंधु स्टूडियो घंटे समय वर्तमान सकाल 5:58:36 आमर अगणित श्रोतबंधु मानंकु शुभ सकाल शुभेच्छा एवं अभिवादन जणाई आरंभ करुछु आज दिनर प्रथम अधिवेशन।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समय वर्तमान सकाळ 6:00 हेबाकु जाउछि आसंतु सुनिबा हिंदी संवाद रिले करि प्रचार करछु आकाशवाणी दिल्ली रु
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह

0: ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा है नी। तुम्हें मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल

0: यूविन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झिया मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

ख्वाब हो या जादूगरी, बस और एक चीज आपके लिए लेके आया हूँ जिसके बारे में अभी बात करना जा रहा हूँ मैं, वो भी एक अपने आप में जादूगरी ही है। कहा भी सर कोचिमु जी गोटे आम खुशी आसर गोटे कुन्नी फूल कुंडर विषय कहचिमु बा फूल गच्छ लगी गोटे छोटिया कुंडर विषय कहचिमु। आप कहते तो फूल गच्छे क्या को खुशी न करे, रंग बेरंगर सुंदरता को तुली धरी बास्नारे मन देह को सतेज कर फूल गच्छ माने जिते बड़े गोटे बगीचार परिवेश को निजर चमक रे पूरा रोशन कर दियंती, पूरा अलग कर दियंती। कहिबा को गले रास्ता घाटरे भी सेमाने अच्छन्ती, पार्करे भी सेमाने अच्छन्ती, सेतेबेले भी सेमाने आम मूड को पूरा रिफ्रेश कर दियंती। तांकु देखे के आमे किछ समय पई केबे केबे अटकी भी जाऊ, किंतु जेतेबेले ई फूल गछटी सकाळु उठु उठु सूर्यर पहिले किरण सहित आपणकर घरर बालकनी रे, आपणकर घर भितरे, आपणकर छात उपरे कुनी कुनी कुंडरे हसी हसी आपणकु गुड मॉर्निंग बोली कहुथांती, सेतेबेले आपणकु केमती लागे कहंतु त। आपण भी लगेछन्ते एमती किछि फूल गछ बा फूल कुंड को रखिछन्ते आपणकर बालकनी रे बा घर पाखरे बा घर गेट पाखरे बा बारंडारे बा घर भितरे, जहा को देखिला माने सकाळु सकाळु आपणकर मन भारी खुशी हे जाय। सतरे ये गोटे खुशीर आसर साजी जाय। बर्तमान साथी सहरीकरण जो आम सहर जगह मान बहुत कम स्थान पाउचे जोठि कि आम टे गगे सुजोग पाउचे फूल गच्छ लगे सुजोग पाउचे आदि बा लगे कौटी तार ठीक भाव जत्न नहीं पारने जदि आम पाखे से ना जदि आम पाखर टे दूर रही जाऊँगी तेम नीतिदिनिया व्यस्तबहुल जीवन में आम टे हेला करदे तार जत्न नापी कौटि ना कौटि से प्रकृत जत्न नपाई फूल गच्छी मरी जा ठीक भाव बढ़ी पारे। यही समय जो छोट छोट फूल कुंड फूल गच्छ आपर बाल्कनी स्थान अधिग्रहण करे आपणकर छात उपरे थाए आपणकर इंडोर प्लांट्स गुड़िकर कथा जदि आमे कहिबा तबे ये एगुड़िक गोटे स्वतंत्रता आणे गोटे स्पेशलिटी आणे आम मन भितर गोटे सकारात्मकता भरी दिए तार चमक तार बासना तार सौंदर्य आम मूड को रिफ्रेश कर दे पारे। तबे अधिकरु अधिक आपण माने ट्राए करंतु जे एटलिस्ट फूल गच्छ लगे फूल कुंड खरा दिन तार टे जत्न नाक पड़े भल भाव बास्ना और रंग से भरा से फूल कुंड तार स्टाइल्स और डिजाइन्स वर्तमान मॉडर्न डे रे केते केते नुआ प्रकार बाहर लेनी। आगुरा में फूल गच्छ देखुथिले माटी तैयारी हे के आसुला फूल कुंड टिए सेथरे आमे माटी भरिकी फूल लगाउथिले विभिन्न प्रकार छोट छोट फूल गच्छ आम से लगे पानी देखिए बड़ करुले टे खूब सुंदर देखा जाता शीत दिन गेंडु फूल अलग फूल गुड़िक शीत दिनिया फूल गुड़िक आहरी तार चमक को बढ़े दूसरा कि बर्तमान प्लास्टिक कुंड आसाणी और विभिन्न प्रकार स्टाइल कुंड गुड़िक उपलब्ध है आपण मन पसंद हिसाब से निज हिसाब से आनीपर निजर घरे रखिपर एवं सफा जगह रखिपर ता सहित ये खरा दिन टे पा दे कि तार जत्न ना निहाति दरकार खाली रखीदे तो हमी ता सहित ये इंडोर फ्लावर प्लांट्स कथा जो मुझे आपन को यार ट्रेंड बहुत बढ़ी बढ़ी चली आपने देखु प्रायतः घर लोक मैंने बर्तमान इंडोर प्लांट रखा पसंद करुंतार पॉजिटिव एनर्जी तार वाइब्स रिफ्रेश करार गोटे बहुत सुंदर रिजन आपत मोबाइल रु बहुत समय सब कंटेंट देखिबारे स्पेंड कर फ्लावर लवर्स गच्छ को भल पाउथवा जन मनीष ट्राए करंतु ना ए इंडोर प्लांट्स इंडोर फ्लावर प्लांट्स गुड़िक विषय जानिबा पई जो गुड़िक आपण को घर भितर रहिबो एवं सुंदर फूल फुटी पारिबो एवं लास्ट रे बस या कहिबी ए फूल कुंडर रिलेटेड कथा भीतर जे फूल कुंड बा फूल गच्छर कुंड केवल जे गोटे गच्छ जहाँ आमको जत्न नबार अच्छी जहाँ आमको केवल खुशी दे दिए ता नुहे खुशी करने पड़े तार मध्य जत्न नबा को पड़े एवं ता सहित आमर गोटे इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए जहाँ कि आमको बहुत खुशी दिए। तबे ट्राए करंतु एटलिस्ट ए खुशी रा आसर फूल गच्छटी फूल कुंड टी रखापी अधिक परिमाण में रखिले तो बहुत भल कि आपणकर ये हिसाब से आपणकर इच्छा मुताबक आपण तार जत्न नापी जी रखिपार खूब सुंदर सुंदर फूल गच्छ से लगे पार्टी देखिक आप खुशी होती तेज ये गोटे

0: સાદિન એક્સ પ્રોગ્રામ રિલે કરી પ્રચાર કરુછું આકાશવાણી દિલ્હીરુ.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર પ્રભાત કે સાથ મેં ફરહત નાઝ. और अब मुख्य समाचार. तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज. राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज. अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए. केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की. समय से पहले दस्तक देगा मानसून. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है.
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं. सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है. इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई. पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा. वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है. चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

0: जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग सहयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील।

0: चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के

0: सेंगोमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: वेलकम बैक टू इनकर्जन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कहुचंती दिल से दिल तक। मु अछि अपन मानक संगरे म्यूजिकल हमसफर विश्वजीत। स्टूडियो घंटे समय वर्तमान 8:31। तबे साथी वर्तमान समय इसरे देखि कहिलाने स्टार्ट करबाकु पड़िबो, माने सुनिबाकु पड़िबो अपन मानकु आपनकर फेवरेट प्रोग्राम मो पसंद। उपस्थापन रे अछंती जस्मिन प्रियदर्शिनी एवं नमिता मल्लिक। प्रयोजना दुर्गा माझी। वैषयिक सहायता सुभाषिष राजगुरु महापात्र। आरंभ करुछु मो पसंदा।

0: साथी ताहले एबे चलंतु कथा हेबा आउ सुनिबा आपनको पसंद गीत। हेलो मो पसंद
1: जय जगन्नाथ
0: की कहउ चंदी
1: आपण उभयंकु भगवान मंगल करंतु मो बालुंगकेश्वर रथ बीररामचंद्रपुर साखीगोपालपुरी
0: साखीगोपालपुरी रु कहि चंदी
1: आज्ञा मु 2003 वर्ष सर करथिली
0: अच्छा तापर आउ फोन करिना
1: हम कोई ना जी ये बहुत डेरे करथि
0: काहे केते डेरी करउ चंदी आपणकर कॉल जदि न आसीबो हम प्रोग्राम केमती करिवु
1: हम सुनु छी किदिन सुनु छी मोर वयस हला 66
0: आपण जदि न कहिथन त जणा पड़ी न थांता तथा जिते कही सारे ताले 66 बयस वर्तमान कौन कर
1: छोट क्लास किए कौन हम बोली सारे पचारे मुझे चाष करी हसीदे कि मुझे भारी आनंद पाऊँ मोर गोटे छोटिया जमी अच्छी मुझे रोज मु गाँव को जाए गाँ ठू हाफ किलोमीटर दूर से मोर गोटे 10-12 एकर जगह मैंने
0: फार्म हाउस भाई
1: 80 मसीह ग्राजुएट मु
0: मैंने ग्राजुएसन सर चाषोग साखी गोपाल नड़िया ने भी गोटे गीत शुणी आपण नड़िया नहीं कि बोधे जगन्नाथ पाखु गले जगन्नाथ कथा शुणी
1: मोर प्रथम अभिमान स्वाभिमान लोक आगे
0: बहुत बढ़िया कथा
1: से जीवन जोड़ी जिनसे निजुक क्या तुलना करम्पेरिजन आम्पिटेसन इकोनोमिकल कनसेंट करी ना नमाइक बंची
0: मांग कि कंपिटन
1: हाँ इकोनोमिकली अन्य जिनस अलग कथा इकोनोमिकली कंपैरिजन और कंपटीशन क्या करी ना
0: व्हाटएवर
1: आई हैव आई एम सैटिस्फाइड विथ द डिसीजन आई एम ऑलवेज सैटिस्फाइड आउ चाहू नमाई कि बंसीबी से 400 नड़िया गस लगे से फलुची आउ 400-500 गुआ गस लगे अलरेडी चलती काम चलती सब दिन काम मुझे गोटे लोक रखुच मुझे लोक ही रही जड़े ओनर लेबर वाचमैन सबकि समय पाए ये आनंद रही सब आनंद स्टेट ऑफ माइंड अनपजल स्थिर भाव में बसुच आत्मसमीक्षा कर सरपंच सरपंच धंदा को गली ना कहार असुविधा सुविधा गोटे लेखिक जनाए जाति फाटिंग क्या बसिकी
0: बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कम आती जोटा कि समस्त नुह पाखापाखि बहुत लोग चाकरी पचर दौड़ी निराश हूँ हताश ही किसी ना कि गोटे अलग पंथा को आपणती कि प्रथम रु ही गोटे सुंदर जिनस आपण जोटा कि कृषि कृषि पुणी आपण एमितिया कृषि करुछंती जो थे कि आप लाभवान भी होती मन को शांति भी मिलुच
1: भगवान मंगल करतु झीटे दुखित मुझे संस्था बेले अमल पड़ता 12-14 एकर जगह
0: अच्छा आपण पु कौन करती
1: पु गोटे से बैंक रोटे प्राइवेट कलेक्शन कलेक्शन फलेक्शन कौन कर माँ मान पे खराब हमती सत मो लाइन से गलानी झीटी चाकरी कर
0: जी माँ मान जो पु खराब हम
1: कहीं मांगा ना सब दिन मोर रे फर्मी चाकिया आईन भर बैडिंग सीएल दब मुक सबुदिन फ्री रहा नो रेस्ट्रिक्शन
0: हाँ जी आपण चिंताधारा आप चिंताधारा अलग अलग पारे आपण जन्म नहीं कि भी आपण पुओंकर चिंताधारा अलग हवा किसी असंभव कथा नुहे तेणुकर सी जदि किसी गोटे लाइन में जीवा को चाहती जाइंटे मन छाड़ी पुणी आपण लाइन धरीदेवे
1: शेष पर्द क्या मांग संस्था बहुत आनंद लगुच
0: मोर गोटे अभिजोग आपण आपण स्त्री को

0: ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଠାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। हेलो मो पसंद।
1: हेलो नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: बहन जी मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ बहन जी, मजे में है। आप बताओ बहन जी कैसे हो?
0: ऐसे ही मजे में रहिए हमेशा, हम भी मजे में हैं।
1: बहुत अच्छी बात है जी, सभी को मजे में रहना चाहिए।
0: जरूर जरूर, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो बहन जी अभी सेवा मुक्त हूँ जी, बस आनंद लेते हैं जिंदगी का, रेडियो सुनते रहते हैं या मित्रों के पास बैठते हैं, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह भी देख लेते हैं, कोई समाचार पत्र पढ़ लेते हैं, ऐसे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, तो आप अवसर ले चुके हैं।
1: बहन जी मेरा अपना ही बिजनेस था, बस अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने काम उन्होंने संभाल लिया। मैंने 45 साल केमिस्ट जॉब की, अब बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, बेटा भी और बहू भी हॉस्पिटल कर लिया, फिर मेरे को अब काम करने की कोई जरूरत नहीं।
0: आप तो आप मौज मस्ती में रहिए बिल्कुल।
1: बिल्कुल चिंता मुक्त रहते हैं, सारा दिन मौज में गुजार।
0: बेटे बहू डॉक्टर है, कौन से डिपार्टमेंट में?
1: दोनों आई सर्जन है जी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं।
0: अच्छा,
1: और पूरी ओपीडी करते हैं, पूरा अपना हॉस्पिटल है उनका जी।
0: आपका एक ही बेटा?
1: हाँ एक ही बेटा जी, एक

0: बेटी है, बेटी चंडीगढ़ में शादीशुदा है और बेटा उधर पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में। दो बच्चे हैं जी और बेटी के भी दो बेटियां हैं।
1: नाना जी बन गए, दादाजी बन गए?
0: बिल्कुल बन गए हैं जी।
1: बहुत अच्छा लगा सुन के आपका, हंसी सुन के और भी अच्छा लग रहा है हमको। आप इतना खुश रहते हैं, ऐसे ही खुश रहिए। और बता दीजिए हमको आज क्या गाना सुनना चाहते हैं मो पसंद से।
0: बहन जी एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, वैसे तो सैड सॉन्ग है पर फिर भी बड़ा अच्छा लगता है मेरे को।
1: बताइए कौन सा गाना
0: जी। यादगार जो मनोज कुमार की थी और उसमें नूतन थी, तो उसका गीत था, याद हो तो थोड़ा सा गुनगुना दूं।
1: जरूर जरूर, श्रोताओं से गाना सुनने की मजा कुछ और है।
0: सही बात है, मैं गुनगुनाता हूँ वो गीत। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं,

0: साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे, मुझे साथ आने दे।
1: गाना तो बहुत अच्छा था और आप भी बहुत अच्छे से गाए हैं गाना, मगर आप ये सैड वाला सॉन्ग क्यों चुन लिए?
0: बहन जी पता नहीं क्या बात है, सैड सॉन्ग सुनने में भी उतना आनंद मिलता है जितना खुशी के गीत सुनने में आनंद नहीं मिलता। आनंद ही लेना चाहते हैं तो बेशक सैड सॉन्ग हो, और फिल्म में तो देखो कहानी के अनुसार सैड सॉन्ग भी होते हैं, वो अपना जगह रखते हैं, और जो लव सॉन्ग है वो अपनी जगह रखते हैं, पर सैड सॉन्ग में ज्यादा मजा।
1: तो फिर सुन लीजिए ये सुंदर सा गाना आपके पसंद की।
0: धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: वेलकम बैक अगेन सभी ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम ट्रिनबाहु को चंद दिल से दिल तक स्टूडियो घंटे समय हो जाए छे ऑलरेडी 9:00 बजे 3 मिनट त माने डायल इन लाइव चैट चैट को स्टार्ट करिवार समय दे सारी छे घंटा घंटा हमको सभी आपण मानक सहित आज डायल इन लाइव चैट चैट रे मनोभरी कथा बा कारण कथा बा आज बहुत खास कारण आज टॉपिक ही बहुत खास आपणकर जीवन सहित आम समस्तक जीवन सहित जोडा एमिति कुछ टॉपिक एमिति गोटे कथा जहाँ कोठी ना कोठी प्रत्येक भाव हो बा परोक्ष भाव हो आपण जीवन सहित संपर्क तार अच्छी एवं खास करी आपण जदि मनीष ता सहित आपण संपर्क केमिति बा न रहिबो कोहंतु हाँ मु आज कहूँ नई विषय बा नदी विषय बंधुगण कह जाए जीवन गोटे नई परी नदी केवल गोटे जलधारा नुहे ये हूँ गोटे जीवंत सभ्यता आम संस्कृति आम स्मृति गोटे जीवंत कहानी आज आम से कूलकूल नाद में बही जाऊ नई विषय कथा हवा जदि आप गोटे गाँव रू तेज आपण गाँव रही नई आपण गाँव रही जलाशय जदि आप रुहति सहर से आप बढ़ी सहर से आपणर पाखे जदि बही जा नई टे से नई सहित कौन रही संपर्क आपण गाँ नई सहित केमती रही संपर्क तारी विषय डायल इन लाइफ चिटचाट आज आम कथा नंबर हूँ 0671-230-3153 कह जाए दुनिया में जिते जिते बड़ सभ्यता व संस्कृति गढ़ी उठी सफल भाव गढ़ी उठी उन्नतिर शिखर से पहुंची प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव से नदीर गोटे बहुत बड़ योगदान अच्छी आम समस्त जीवन ने भी प्रत्यक्ष हो परोक्ष भाव हो नदी गोटे एमती भाग नदी गोटे एमती अंश जहां को आम जीवन मनीष जीवन के बाद दे हबनी से नदी विषय आज आम कथा आपण मान कल आसत कथी आपण मान गांव नदी विषय नदी सहित जोड़ा स्मृति विषय नदीकूल से बसवार समय नदीकूल से काटि समय नईरे पहरा शिखिवार से स्मृति नई सहित जोड़ा अनेक स्मृति अनुभूति जहां आज भी आपण मन अच्छी आम सहित सेयार करेंगे आज आसी फर्स्ट कल देखा किए कर हेलो नमस्कार किए कहते कौट कहते
1: अशोक पंडा मधुपटना कटक
0: अशोक भाई नमस्कार गुड मॉर्निंग कौन कहिबे नदी सहित अशोक भाई संपर्क कौन नई सहित केमती कौन संपर्क
1: मो मामू घर को जाए
0: आज्ञा
1: मामू घर पाखे मामू घर पाखे कि कुआ खाई नई बही जाइछि
0: आज्ञा आज्ञा
1: मु से कुआ खाई नई रे पहरा सिखिछि आउ आमर तो इति कटक रे महानदी
0: आज्ञा
1: किंतु मु केबे महानदी की जाइनी की सेटी गाधेनी की पहरा पहरिनी
0: अच्छा
1: किंतु कुआ खाई नई रे मु पहरा सिखिछि एवं बहुत भल पहरिछि
0: अच्छा
1: आउ नई हिसारे इति कहिबे
0: आज्ञा
1: नई गोटे आदर्श नई तार स्वतपुष्ट भाव स्वतनी भाव कड़ी जाए सामने जिते बाधा विघ्न आसिले भी पथर आसु पहाड़ आसु अलिया आसु आवर्जना आसु जहा भी आसु से कौन सी खातिर न करकी सी तार अविरत गति चली था नई ठू से शिखबार अच्छी
0: बहुत सुंदर कथा अशोक भाई कहिले जे अनेक बाधा विघ्न को अतिक्रम करी जेमती नई बही जाऊ था निरंतर भाव आम जीवन में मध्य अनेक सब बाधा विघ्न को प्रतिघात करी आमे सिखी आगु को बढ़िबा उचित
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई कॉल करथिबारु कथा कि बहुत भल लागिला रहिलु भाई नमस्कार
1: आज्ञा
0: सदी के सुंदर कथा कहले अशोक भाई जे नई आमको बहुत कथा सिखाइबे नदी सहित आमर संपर्क खाली जे पहरिबार कथा नुहे आमर मन को शांति दबा परिवेश सहित निजर किछ समय काटिबार कथा नुहे नदी सहित सिखेबार मध्य अनेक किछ कथा अछि ए जेमती निरंतर भाव रे तार गति को से चलमान करी थाए आउ बहुत बासी श्रुतिश्विनी नई विराट पत्थर खंड को भी भांगिकी चुनमार कर दे पारे तार जल तार स्रोत सब प्रतिबंधक को भांगी के आगे को बढ़ी पारे आसी जाए कॉल देखिबा किए कर नई सहित कौन संपर्क

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

ख्वाबों के एक सफर में जब फरमाइशें होती हैं पूरी, ख्वाबों के एक सफर में जब फरमाइशें होती हैं पूरी, दिल को मिलता है सुकून और यादें होती हैं और भी गहरी। तबे आपण मानकर फरमाइश को पूर्ण करबा पई आपण मानकर अनुरोध को रक्षा करी कि आपण मानकर मनपसंद रे गीत को प्ले करबा पई जो प्रोग्राम आपण मानकर फेवरेट रेनबो एसएमएस को स्टार्ट करबार समय हे जाईची। वेलकम बैक अगेन, ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को। तबे साथी आपण माने यदि चाहंती आपणकर फरमाइश पठिबा पई शीघ्र शीघ्र आमो को ताले फोन उठानतु, शीघ्र शीघ्र एसएमएस बॉक्स को जानतु और टाइप करंतु फर्स्ट जे की एफएमआरसी एफएम प्रसिद्ध एफएमआरसी टाइप करी तापर लिखी दियंतु को गीत सुनिबा पई चाहुचंती, को फिल्म रो को एल्बम रो संगीत काहा को डेडिकेट करिबा पई चाहुचंती एवं ससरे निज ना ठिकाना सहित पठि दियंतु हम नंबर 0949596321 रे। जदि करिबा पई चाहुचंती हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कनेक्ट होवा पई चाहुचंती हम सहित व्हाट्सएप रे, तबे नंबर होची 8895254200। तेरे नहीं जीवा फर्स्ट फरमाइश आज किए कर देखा सीडीए कटक सेक्टर 13 रु सुरक्षा सहाय सहयोग भवन रु डम्बरुधर रथ शर्मा ए मेसेज कर गुड मॉर्निंग टू ऑल डेडिकेट कर सब श्रोता बंधु मान ब्यूटीफुल ट्रैक जहां गाई लकी अली फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार हेरो निश्चित भाव प्ले कर दूचे सुंदर गीत गोटे सुंदर गीतर अनुरोध कटक निश्चिंत कोइली गोपपुर कटक रु चंद्रकांत पृष्टि सुनवा चाहिए आशिकी टू चलचित्र भूला देना मुझे ए दुईटी ब्यूटीफुल ट्रैक आपण मानी।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

वेलकम बैक सदी ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंदी दिल से दिल तक स्टूडियो घंटा समय है यही वर्तमान 11:02 ता माने स्टार्ट करने को पड़ो आपण आमर फेवरेट प्रोग्राम जो प्रोग्राम रे गोटे एमती कलाकार विषय में आज आम कथा हूचे जी निजर अंदाज रे वेस्टर्न को टिके आपण इचंदी सत कथा टिके स्टाइलिश अंदाज रे से निजरो लुक को प्रेजेंट करंती निजरो पर्सनालिटी को शो करंती सत किंतु तांका वॉइस रे जो जादू अछि जो खनक अछि सी बोथ क्लासिकल म्यूजिक रोमांटिक म्यूजिक डांस भरा म्यूजिक धूमधड़ाका म्यूजिक ठारु स्टार्ट करके गजल पर्यंत सब क्षेत्र रे जने बहुत भल वर्सेटाइल सिंगर भाबरे निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती यस जहांगर आज हैप्पी वाला बर्थडे मु कहूची सही रॉकस्टार बेनी दयाल को विषय रे 1994 आज दिन रे आबुधाबी रे जन्म नहीं थिले बेनी दयाल छोट बड़ू म्यूजिक प्रति गोटे आकर्षण पूरा माने धरिक थिला तांको भितरे आउ सेथी पई त स्कूल रे पाठ पढुथुवा समय रे कॉलेज रे पाठ पढुथुवा समय रे अनेक गुडीए स्टेज रे परफॉर्मेंस करबा हो बा कॉलेज समय रे निजर निज सांगमनन को धरिकी गोटे

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अच्छो? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइ छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

वेलकम बैक टू इनकर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक वेनी दयाल कविसर कलाकार रे आज आमे करूचे कथा होचे आलोचना करूचे तंगा म्यूजिकल करियर बिसेरे तंगा स्ट्रगल्स बिसेरे कोहतली किछ समय पूर्वरु जे बहुत स्ट्रगल करबा पई पड़ीची एमेदि समिति मिली जाईनी वेनी दयाल को गुटे स्वतंत्र स्थान बॉलीवुड रे बा प्लेबैक सिंगिंग रे एमती अनेक कंपोजर्स माने अछंती जो माने वेनी दयाल कर प्रशंसा रे कुहंती जे सिंगर्स माने केवल आसंती निजर गीत को गाइड दियंती एवं चली जायंती ए भली सिंगर वेनी दयाल नुहंती। वेनी दयाल जते भल सिंगर सेते भल जने म्यूजिशियन मध्य म्यूजिशियन माने तांकर नॉलेज अबाउट द स्टूडियो सिंगिंग अबाउट द प्लेबैक सिंगिंग एवं खास करी जो टेक्निकालिटीज रो कथा गुडी को थाए हाउ टू फेस स्टूडियो माइक्रोफोन हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड को शब्द को केमिति उच्चारण कले सियाउटी के सुमधुर है कि सुभिबो एवं को जगरे को इमोशन को भली भावरे स्टूडियो रो माइक्रोफोन आगरे एक्सप्रेस कले ता खूब सुंदर भावरे फुटी की मिक्स आउ मास्टर परे सुना जीवो ए सब जो टेक्निकल कथा गुडी को अछि एवं टेक्निकली जो सब सुंदर सुंदर पॉइंट्स गुड़िक अच्छी गीत भितर हार्मोनाइज करिबा हो बा मेट्रोनम बा बीट सहित खेलिबार कथा हो एवं ता सहित किछि किछि निजर एफर्ट निजर कंपोजर कर परमिशन ने कि किछि किछि वेरिएशंस निज तरफ एवं जो गुड़िक से गीत को खाप खुव से गीत को आउ सुंदर करुव ए सब जिनस वेनी दयाल बहुत पारंगम एवं खूब सुंदर भाव में सब कथा को से एक्सप्रेस करी परंती स्टूडियो माइक्रोफोन सामने रे एक कथा हमें कहनु अनेक कंपोजर जो माने वेनी दयाल को भल पाते नहीं काम करती से कहते एवं निज को सबु जनर रे फिट करबा आजिकालिका जमाना रे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिनस गोटे सिंगर पाई कारण जदि आपण डांस पैटर्न गीत गाउछंती आपण को सेही लाइन रे गीत केवल मिलिबो एवं जदि आपण स्लो सॉन्ग गाउछंती फेत आपण को सेही जनर रे गीत ही मिलिबो बट वेनी दयाल एथुरु टिके निज को भिन्न रखिछंती सबु जनर रे गीत गाइबा पई पसंद करंती एवं सबु जनर रे निज को सफल भाव रे मध्य प्रतिपादित करी परिचंती चलंतु आउ दुईटी ब्यूटीफुल ट्रैक वेनी दयाल को वॉइस रे सुनिबा आउ कार्यक्रम को आगू बढ़ेबा

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रे रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि दैछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

साथी ए खरारु निजो को बंचेबा को सुस्थ रखिबा को हेले आपन को निजो खाइबा पिबारे बि जथेष्ट ध्यान दबा को पड़िबो। जेमिति कि अत्यधिक तेल मसला छणा छणी ए सब खाद्य ठो निजो को दूरै रखिबा को त पड़िबो। बॉडी को कूल रखुथबा खाद्य आपण टिके अधिक कंज्यूम करंतु। एई जेंति लंच रे हम समस्तक पूरा ओडिसा वासिंग फेवरेट पखाळो पखाळो को आपण खाई परिबे। जदि दही पखाळो खाई परुचंति ताहाले तो साथी खरा को आउ जम्मा भी भय करबा दरकार नै। खाली पखाळो काहेकि काकुड़ी तरबुज फुटी ए सब फ्रूट्स भरपूर मात्रा रे आपण कंज्यूम कर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में

0: विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Arlekar, to prove his majority in the floor of the

0: तम झियो तो बहुत स्मार्ट झियो तमको केते वर्ष
1: मते 14 वर्ष
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो
2: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि
0: हां एहा एपरी एको कैंसर जहा को एचपीवी वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो
2: धन्यवाद दीदी
0: निश्चय निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा।

तो साथी देखी नबा नेक्स्ट मेसेज टी किए करिछंती मेसेज टी करिछंती सुनील कांत महंती देवकाली संखत्रास कटक रो लिखी छंती जे मैडम शुभ मध्यान निहाती साथी आपनको मो तरफ रु नमस्कार शुभ मध्यान साथी लिखी छंती जे मैडम कथारे अछि सेकाळ पखाळ प्रकृतरे से आगकाळ चावळ ना अछि ना से पखाळ रो स्वाद अछि तथापि पखाळ कथा उठिले केमिति गोटे नियार अनुभव आसे निहाती सतरे से पखाळ सांगरे आम ओडिसा वासिंकर गोटे इमोशन जुड़ी हेछे आउ भी लिखिछंती जे एबे तो मु संपूर्ण शाकाहारी हेले आगरु पखाळ सांगरे माछ भजा सांग को देसी पियाज पखाळ सांग को मिक्सचर पखाळ सांग को बाइगण किम बाइगण पोड़ा किंबा आलू पोड़ा आलू चटणी बेस मजादार साथी सत कथा अबिका सिना आपण शाकाहारी हे जाइछंती किंतु सेई जो पखाळ सहित से जो माछ भजा केते भल लागे कहिले निहाती अबिका केवल जे माने आमे जदि आमिष भक्षण करछु सेतरे नुह सेटा भी भल लागे पखाळ सांग को किंतु शाकाहारी रो भी मजा अलगा से जो खाइबार रो सब मजा अलगा आउ ता सांगरे जेतेबेले पखाळ कंसाय थाए ना ता मजा तो पूरा नियारा सो ये थिले सुनील कांत महंती देवकाली संखत्रास कटक रु आमको मेसेज करथिले साथी आपनको बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम सहित आज चर्चा रे कार्यक्रम रे जोडी हेथिले सेते पई आपण समस्तको बहुत बहुत धन्यवाद सो साथी आपण भी काहे की वेट करछंती आपण भी जणई दियंतु जे आपनको पखळ सहित आ कोन कोन आइटम सब खाइबा को पसंद आसे बेसी भलो लागे आमको मेसेज करिबा पई नंबर होची 0949596321 एवं व्हाट्सएप नंबर होची 8895254200 आमको एसएमएस करिबा पई टाइप करंतु एफएमआरसी टिके स्पेस दियंतु निजर मतामत लिखी तापर टिके स्पेस दे निजर नाउ एड्रेस लिखी नंबर होची 0949596321 एवं 8895254200 रे आमको एसएमएस टी पठे दियंतु

0: वेलकम बैक सती ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। आज आज चर्चा रे टॉपिक रही थिला अपन मानन को पई जे अपन को पखाल सहित आउ साइड आइटम्स रे कोन कोन बेसी खाइबा को भलो लागे बेसी भलो लागे। सो ए टॉपिक ऊपर आ गोडी मेसेज हम पाखरे आसी पहुंची जाई छी। ए मेसेज टी कहि छंती दिलीप सुतार धुसरी भद्रक्रु लिखुछंती गुड आफ्टरनून भौणी केमती अछंती आपनको बि साथी वेरी गुड आफ्टरनून आ मु भलो अछि आपनको बि बहुत भलो थिबे बोली भाबुछि। ता सहित लिखिछंती जे पखाल सहित बडी छिचा सुकुआ पोडा टमाटो चटणी ता सांगको सजना साग भजा खाइबाकु तांको बहुत ही भलो लागे बोली मेसेजटी करिछंती। सो ये थिले दिलीप सुतार धुसरी भद्रक्रो साथी आपनको बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी हेइथिले निजर मदामत आम सहित शेयर करिछंती। सेति पई आपन मानंको आज जो माने सब आम सहित जोड़ी हेइथिले जो साथी माने जो बंधु माने आम सहित जोड़ी हेइथिले निजर मूल्यवान मदामत आम सहित शेयर करिथिले से समस्तंको आम तरफ ढेर सारा शुभेच्छा एवं ढेर सारा धन्यवाद। ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिलसी दिल तक। स्टूडियो गड़ी समय वर्तमान दिन गोटे बजी 50 मिनिट हवा को जाउछे सुनिपारे आम केन्द्र ओडिया रे संवाद एवं परे परे इंग्रजी एवं हिंदी रे संवाद रैली करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्ली रे दिल्ली रु।
1: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती प्रज्ञा परिमिता जेना। तमिलनाडु विधानसभा रे आस्था भोट्रे विजयी हेले टीवीके सरकार। पुडुचेरीर मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले एन रंगास्वामी। प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था रे नियोजित जानवाहन संख्या ह्रास। सुना एवं अन्यान्य मूल्यवान धातु उपरे आमदानी शुल्क वृद्धि कले सरकार। नीट यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र प्रकट घटनार तदंत लागि जयपुर रे पहुंचले सीबीआई रे स्वतंत्र दल। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भेटिबो कोलकाता नाइट राइडर्स। तमिलनाडु रे टीवी के नेतृत्व रे परिचालित सी जोसेफ विजय का सरकार आज विधानसभा रे आस्था भोट रे विजयी होइछन्ते। तांको सपक्ष रे 144 जन विधायक भोट देथिले। या फल रे गृह रे विजय का नेतृत्व रे परिचालित मेंटो संख्या गरिष्ठता हासिल करिछे। विजय

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से।

0: विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुद्दुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुद्दुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष

0: सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर

0: आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आमर परवर्ती कार्यक्रम सुनि पारिबे आंचलिक संवाद किछि क्षण मध्यरे।
2: जीएसटी काउंसिल टैक्स को आहुरी सरल करि दैछि। सरकार सीमेंट उपरे जीएसटी दर 28% रु ह्रास करि 18% करि दैछन्ते। ट्याक्स ह्रास द्वारा घरोई एवं व्यावसायिक प्रोजेक्ट उपरे चाप कम हेबार संभावना रहिछि। एहिपरि मार्बल एवं ट्राबोटिन ब्लॉक उपरे ट्याक्स रो दर 12% रु ह्रास करि 5% करि दिया जाइछि। जेबेकि ग्रानाइट ब्लॉक उपरे पूर्वरु 12% तुलना रे एबे केवल 5% जीएसटी लागिबो। एहा सहित बाली चूनर ईटा और पत्थर काम उपरे मध्य ट्याक्स रो दर 12% रु ह्रास करी 5% कर दिया जाइछि।
3: अरे कविता भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
4: दीदी मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।

0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
1: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करिबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
2: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरि एक कैंसर जहा को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
2: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाइछि। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाइछि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटी टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

हे फ्रेंड्स, ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आपण मनंग सुत जोडी हि जैसी आपण कर रेनबो साथी नारायण और वर्तमान ठू मोरे सफर स्टार्ट हे सरीची आपण मनंग सुत रहबो राती 11:10 बजे 10 मिनट पर्यंत बहुत किछि मस्ती रहिची बहुत किछि एंटरटेनमेंट रहिची गीत रहिची आ किछि कथा मध्य आपण मनंग सुत हम शेयर करबी आशा करूछि फ्रेंड्स आपण माने समस्त बहुत भल रहिथिबे बहुत खुशी रहिथिबे लंबा डिस्टेंस परे एथिकी तो निश्चित भाव पचारि सबुबले से गोटे कथा आपण मो हृदय रही एफएम रेनबो हृदय रही आपण मैं केमती अच्छा निश्चित भाव आई होप कि बहुत भल थे तो आज हूँ वेडनेसडे वेडनेसडे मान आपर वर्किंग डे आ कौन सी काम नहीं आपण व्यक्तिगत लाइफ बहुत बिजी थे तो जिते भी बिजी था बहुत खुशी रही था आजर केयर नि कहीं बाहर भी बर्तमान खरा हो अवश्य बेले बेले जो कहते मौसम मिजाज टी पर आसू बेले बेले एमती हूँ जमी पूरा मानने टाण खरा अवश्य से ह्यूमिडिटी ना टेम्परेचर ना टे रिलैक्स लगुच तो ये जमार भी व्यस्त हवा ना कि व्यस्त ये हवा आप निजर जो केयर नवा जमीक आप अफिस फेर फेर टाइम अल्प समय पर केयरफुली आप ड्राइविंग करके आसतु मुंडे हेलमेट आप पिंधतु गाड़ी आराम से चलांतु कौन से व्यस्त दरकार ना आराम से आसिक घर पहुंचतु सबकि कम ठीक ठाक होने भी जिनस अटकी जीवन कितु आपणकर रास्त चलवा जर्नी करवा बहुत निजक कंट्रोल भर रखा निहाती दरकार जदि ये

सदी को छुट्टी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आमे सुरीला आफ्टरनून छुट्टी और सुनुंच मीठा मीठा गीत हाँ फ्रेंड्स अपराह्नर अनुभूति कथा कहले आमे समस्त कथा कहीपरबानी अपराह्नर अनुभूति किसी अलग अलग हो पाए मोर अलग आपणकर अलग आम समस्त जिते प्रकार डिफरेन्ट आम कहीपर समस्त पुराणा कथा को लेकिन पुराणा दिन को लेकिन आम जो मानने अपराह्नर जो दिन को लेकिन समस्त अनुभूति टी अलग अलग हो पाए किंतु पिला दिन अनुभूति कहवा कले समस्त सामान हो पाए किसी हो पाए सामान पूरा नहले भी पखापाखि हो पाए अपराह कले मत से जो पिलादिन से गाँ दाण्ड स्कूल को जबार समय ए सब कथा मन पड़े स्कूल रु फेर पड़े बैगटा को फिंगी देक सांग मान सहित खेल दौड़ा से समयटा के निष्पाप था कहले गछ छाई बस चोर पुलिस खेल कि पोखरी कूल बस पा गोड़ हल से अनुभूति आज सहरी जीवन में कौटी हजि जा आज भी जिते बड़े छरका को देखिकी मन पड़े से कौल खरा को देखिले जिते बड़े लगे से पुराणा समय फेरी जा फेरी आगे जमी से समय पुणे फेरी आसता कि समय तो फेरे किंतु लगे टी फेरी आसता से समय जो समय से दिन झरका पाखे बसिकी उदौदिया दीपर को अनौली उदौदिया दीपर से जो कौल खरा मानने टाण खरा को क्षमा करें टाण खरा को आम देखुले बापा माँ शोई पड़ी घर पर अन्य लोक मैंने शोथ्ये कि आगे को निद आसुन मन कहू थे बाहर को जाकि बुलायापी कि डर भी एपटे थे पर लोक मैंने उठिजे पार्टी करेंगे गाड़ी करेंगे जे दीप्रहर अपराह एमती मानने रेस्ट नवा जगार बाहर को कहीं बाहर एमती बहुत गुड़े भय थाए बहुत गुड़े मादकता भी था मादकता से भय बर्तमान जितेबले मन पड़े बहुत खुशी लगे बहुत मिस करुछंती अनुभव हुए नुक आपणकर भी सेमती अनुभव हो तेज चलत किसी गीत शुणे ना गीत मध्यम आपणकर पिलादिन कथा को मन पकई पारे स्टे ट्यून 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

सधी केबे केबे अपराह्न बहुत नीरव हो जाए। घर भितरे घंटार टिक टिक शब्द छड़ा आउ किछि सुना जाए नी। ए नीरवता किंतु खराब नुहे, ए हेउछि निज सहित निजर कथा हबार गोटे प्रकृत समय। गोटे कप चाह आउ

सारी पुणे आप स्वागत शो चली बर्तमान डाइनिंग लाइफ डाइनिंग लाइफ आप टॉपिक अच्छी आपण घर एमती कौ पुणा जिन अच्छी जहाँ को आप आज पर्यटन सहित रखिंट बर्तमान किए अच्छा।

के आदि होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए, अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा अब खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़े तो आप देखिए आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है।

ट्यून कोचंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुनतो कार्यक्रम सूचना प्रथमे चलित अधिवेशन गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस षोलतम भाग शुणे सन्ध्या 6:00 बजे 10 मिनिट रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना सन्ध्या 6:00 बजे 30 मिनिट रे सन्ध्या आसर राति 17:00 बजे 25 मिनिट रे राति 8:00 बजे 2 मिनिट रे शुणे गीतर मितरे एथरे शुणे सुपरहिट ओडिया एवं हिंदी चलचित्र गीत अबुला स्मृति शुणे राति 9:00 बजे 15 मिनिट रे एथरे पुरुणा ओडिया एवं हिंदी चलचित्र गीत राति 10:00 आपणक अनुरोध रे गीतर कार्यक्रम रेनबो एसएमएस शुणिले चलित अधिवेशन कार्यक्रम सूचना एथर शुणु आसंता काली प्रचारित होबाक थिबा कार्यक्रम सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी सकाळ 6:00 बजे 5 मिनिटे अतिबड़ी श्रीजगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 34तम भाग सकाळ 6:00 बजे 40 मिनिटे सकाळ 17:00 बजे 10 मिनिटे अमर स्वास्थ्य एथिरे विषय रहिछि मानसिक सुस्थता रक्षा करिबे किपरि ए संपर्कें कहिबे डाक्टर सत्यकाम महापात्र सुबह सकाळ 17:00 बजे 25 मिनिटे सकाळ 8:00 बजे 30 मिनिटे मॉर्निंग मेलोडी डायलिन लाइफ चिटचाट शुणे सकाळ 9:00 एवं संध्या 5:00 बजे 2 मिनिटे एथिरे निर्धारित विषय फोन कॉल माध्यम रे निजर मतामत देई परिबे।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

0: झारखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः तीव्रवायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्यानन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति वैश्विक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: तो उनको छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

चरणमाझी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद जनाई। ट्रेन चलाचल जो पूर्व पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रा रेल जोगाजोग व्यवस्था सुदृढ़ हेब एवं कोरापुट और संबलपुर अंचल अधिक तीर्थयात्री पुरी को आसीपारे मुख्यमंत्री केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई द्वारा परिचालित चलित वर्ष द्वादश श्रेणी परीक्षा फल आज प्रकाश पाई। परीक्षा में 85% ऊर्ध छात्र छात्री उत्तीर्ण होती 88% ऊर्ध छात्री कृतकार्य होता बेले 85% ऊर्ध छात्र उत्तीर्ण होती। results.cbse.nic.in परीक्षाफल उपलब्ध हो छात्र छात्री माने डीजी लॉकर उमंग आप जरिये परीक्षाफल जानपारे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तीर्ण होता छात्र छात्री शुभेच्छा जनाई। परीक्षाफल निर्विशेष छात्र छात्री दृढ़ आत्मविश्वास प्रति आहवान को सामना कर आगक बढ़ापी मुख्यमंत्री परामर्श देते प्रतिभावान युवपीढ़ी ही समृद्ध ओडिशा सारथी हेबे बोली श्री माझी कहते। ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षाफल आसंता सप्ताह प्रकाश पाइब बोली परिषद पक्ष सूचना दी। चलित वर्ष गोटे दिन में कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक पाठ्यक्रम परीक्षाफल प्रकाश पाइब। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बेंगलुरु स्थित यूआर राव सैटेलाइट सेंटर एवं इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट परिसर को बुली देखिछन्ति। मंत्री इसरो रा वैज्ञानिक अधिकारी मानक सह ओडिशा रे विपर्यय परिचालना खाद्य सुरक्षा तदारक एवं प्राकृतिक संपदर स्थितावस्थार मानचित्र प्रस्तुति क्षेत्र में उपग्रह तथ्य प्रदान संपर्क में आलोचना करथिले। मंत्री एही समय भविष्य में जोगाजोग व्यवस्था नाभिगेशन सैटेलाइट गुड़िकर जटिल संयोगीकरण तथा निरीक्षण प्रक्रिया संपर्क में अवगत होते। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आसंता मास 21 तारीख में अनुष्ठित होबो। सकाळ 9टा रु 11:30 पर्यंत प्रथम पत्र एवं अपराह्न 2टा रु 4:30 पर्यंत द्वितीय पत्र परीक्षा होबो। परीक्षा पई आसंता मास 9 तारीख रु बोर्ड वेबसाइट bscodisha.nic.in रु परीक्षार्थी माने डाउनलोड करबा पई बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। केन्दुझर जिलास्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम अनुष्ठित उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मुख्य अतिथि भाव जोगदे विवाह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को अधिक शक्तिशाली करिवारे अधिक सहायक हेबो। योजना अनुसार प्रत्येक कन्या बैंक खाते 45,000 टंका जमा कर सहित 60,000 टंका व्यय विवाह संपन्न कर। सुवर्णपुर जिले ग्रामीण विकास और पंचायतराज व्यवस्था को सुदृढ़ करने लक्ष्य नूतन जिला पंचायत साधन केन्द्र को पंचायतराज और पानी जल मंत्री रवि नारायण नायक उद्घाटन कर 2 कोटी ऊर्ध टंका व्यय अटकल निर्माण कर केन्द्र पंचायत स्तर में उन्नतिमूलक कार्यक्रम सठिक रूपायण सह लोक सरकारी योजना संपर्क में सूचना और प्रशिक्षण प्रदान कर। देवगढ़ जिलापा विकास भवन सम्मिलनी कक्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिलास्तरीय समन्वय समीक्षा बैठक जिलापाल कविंद्र कुमार साहू अध्यक्षतार अनुषित बालिका सुरक्षा से सशक्त करने जिला शिशु सुरक्षा यूनिट कार्य करने जिलापाल गुरुत्वारोप कर। गंजाम जिला परिषद सम्मिलनी कक्ष में जिलास्तरीय प्राकृतिक विपर्यय कमिटी प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित नदी बंध समुद्र तट सुदृढ़ीकरण बन्या समय तलिया अंचल लोक सुरक्षित स्थानांतरण व्यवस्था जल निष्कासन पानी जल व्यवस्था आदि विषय आलोचना करा। देवगढ़ जिला परिषद सम्मिलन कक्ष में जिला परिषद दशम बैठक अनुष्ठित बैठक में विधायक जिलापाल जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रमुख जोगदे जिलार सामग्रिक विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करने उपर गुरुत्वारोप करते एथिसो विभिन्न योजनार कार्यान्वयन संपर्क में आलोचना होता। रायगढ़ ब्लक सद्भावना सभागृह परिसर में ब्लक स्तरीय जनशुनाणी शिविर अनुष्ठित अतिरिक्त जिलापाल विभिन्न अभियोग शुणाणी कर तुरंत समाधान करने को विभागीय अधिकारी निर्देश देते। नयागढ़ जिला प्रशासन पक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वां जयंती उत्सव पालन अवसर में नयागढ़ साइक्लोथन और माराथन रैली आयोजन कर जिला स्टेडियम माराथन आरंभ हो नयागढ़ स्वयंशासित महाविद्यालय पर्यंत जा कार्यक्रम में 200 अधिक युवक युवती अंशग्रहण कर।
दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

टोनको चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक साथी इवनिंग अपडेट्स को आप मन को बहुत बहुत स्वागत। साथी आज हूँ सच्चिदानंद राउतराय जन्मतिथि। सच्चिदानंद राउतराय बहुत भल भाव जानते सचि राउत नाम सच्चिदानंद राउतराय गोटे बहुत सुंदर कविता देखिथे शुणिथे छोट मोर गांटी भोगल पोथी पतरे पछे न थाउ तार नाटी। हाँ से सच्चिदानंद राउतराय जणे ओडिया कवि गाल्पिक।

साथै विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शान्ति एवं मानवतार प्रेरणा स्तम्भ पण्डित श्री श्री रविशंकरंकर आज होउछि जन्मदिन। ए अवसरले एफएम रेनबो परिवार तरफरु तांक मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। हाँ, जीवनर शांति सकारात्मक चिंताधारा आउ मानव सेवार बार्ता को समग्र विश्वरे प्रसार करिबारे तांकर बहुत बड़ योगदान रहिछि। तांकर आध्यात्मिक चिंताधारा सरल जीवनशैली एवं मानव सेवार आदर्श आज लक्ष लक्ष लोकंकु प्रेरणा देई आसुछि। तांकर जन्मदिन रे ए विशेष मुहूर्त रे आमे प्रार्थना करुछु जे से सबुबले सुस्थ सुखी एवं दीर्घायु रहंतु एवं तांकर ज्ञान और शांतिर बार्ता आगामी दिन में समस्त हृदय को आलोकित करथाउ।

सदैव संध्या सर आज कथा किसी हेल्थ संपर्क आमे केमी निजर केयर नहीं पार ठीक रे खाद्य खाई ठीक रे रेस्ट नहीं पार और ठीक रे व्यायाम कर स्वास्थ्यर गोटे मुख्य अंश होची नियमित व्यायाम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनिट आमको किसी ना कि आक्टिविटीज यार भितर कर माने जारी रखा दरकार जमीक योग आपे हाल्का व्यायाम करें यह सब आम शरीर को सुस्थ एवं सचेत रखि था व्यायाम हूँ मात्र शरीर को शक्तिशाली कैनि मन को प्रफुल्ल रखि था बहुत लोग कमर चापर शारीरिक चर्चा को अवहेला करती जहाँ मान जहा जोटा कि परवर्त समय उच्च रक्तचाप मधुमेह एवं अन्यान्य रोगर कारण हमार बहुत संभावना बढ़ी जाए से व्यायाम को दैनिक अभ्यास भाव आम सामिल करम दैनन्द जो रुटीन भितर ता सहित मानसिक स्वास्थ्य मध्य शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गुरुत्वपूर्ण चिंता अत्यधिक कामर चाप एवं अनियमित जो जीवन आम अनियमित जीवनशैली आम जहाँ कोई सब आम मन को अस्थिर करें भल पुस्तक पढ़ा परिवार सहित समय बीतवा आउ ध्यान करवा सब आम जी अभ्यास रखती ताल मानसिक स्तर में आम शांति अनुभव करें मन को खुशी कर खुशी रखिपर तेज शरीर सुस्थ रेणु केवल शरीर नुहे मनर जत्न ने बहुत आवश्यक।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

सदैव उनको चुनती 100.4 आगस बनी फिल्म रेनबो कटक दिल से दिल तक हाँ समय वर्तमान आपण करो आपण को पाई मीठा मीठा गीत पहुंचे पारो गीतर मित्र कार्यक्रम को आपण मानों को बहुत बहुत स्वागत।

सधे गीतर भितर कार्यक्रम आपंट किसी सुपर हिट ओडिया एवं हिंदी चलचित्र गीत आसत आम आज कथा होती मनर मनीष संपर्क हाँ से मनर मनीष से मनर मनीष प्रेम पड़ा बहुत सहज किंतु से प्रेम को मनर मनीष सहित शेष पर्यंत नहीं भाईबा बहुत मान जोटा कि बहुत बड़ कथा आईटा हूँ प्रकृत सफलता आम कहीपर जीवन झड़झा भितर जितेबले समस्ते साथी छाड़ी दिंती सेतेबले केवल से जड़े मनीष ही हाथ धरी छिड़ा होता है से गोटे कथा मुझे ना ये पदुक कथा ही सब समस्या समाधान कर दिए मनर मनीष मान केवल प्रेमिक व प्रेमिका नुहंती से होती आपणकर सबुठ भल बंधु भी पारती जहाँ आगे आपड़ निजर सब दुर्बलता प्रकाश करें ए संपर्क सुंदरता को आम निज हृदय भितर तुणी रखा दरकार दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता हर रास्ते का कोई अंजाम नहीं होता अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ से तो कोई फिर रिश्ता कभी नाकाम नहीं

0: 20 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ସାଥେ ସମୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଗୀତରେ ମିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक

0: संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,000.

0: چلادی بازار تو همون چطور نمی‌بینی چلادی بازار تو همون چطور
1: نمی‌بینی
2: परवर्तीस में स्कर्चंती निर्मला बेहरा संतोष बेहरा नातुणी आद्यासा कंतुला आठगढ़ आपड़ शुणा चाहते तृप्तिदास कंठ से ओडिया आधुनिक गीत मु तुम बधु नुहे बंधु तेज निश्चित भाव में शुणीदेव आपणपसंद गीत परवर्तीस में सामक कर परमानंद बेहरा मधुमिता तलाई एंड झील शिवानी चौद्वार शंकरपुर आपणा चाहते साखी गोपीनाथ कथचित्र मानादेयक वयस गीत तेज आपण बहुत बहुत धन्यवाद एफएम रेनबो सहित जोड़ी होती शुणी दूसरे आपण मनपसंद गीत स्टे ट्यून्ड।

ससरे गोटे मेसेज देखा मंटू सर जी ग्रहण पटामुंडी केन्द्रापड़ कर पूजा चलचित्र शुणा चाहते गीत गई सिकंदर आलम और बाणी जयराम।

0: ସଦାଇଡ଼ି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ଏସ୍ବିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की

0: थी कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक
2: नमस्कार। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭାଦ ସହ ମୁଁ ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ 14 ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପଭିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ଆଳୁ, ପିଆଜ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ୟୁଏଇ ସମେତ 4 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ୟୁଏଇ ସହ ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ନାଗରିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳାଚଳ କରିବ ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 85%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ 193 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 6 ଓଭର ଶେଷରେ 1 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 66 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବା ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଶୁଭରାତ୍ରୀ।

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखी साइटी
1: आमर स्वास्थ्य आज एथरे सुनंतु मधुमेह रोगींक पई चक्षु संबंधित परामर्श ए संपर्क रे आलोचना करिसेंते डाक्टर अनुराग मिश्र।
2: रक्तरे शर्करार परिमाण वृद्धि होइथिबा अवस्थाकु मधुमेह बा डायबिटीज मेलिटस बोली कहाजाए। एहिभळि रोगी अनेक विषय रे सतर्क रहबा उचित। रक्तर शर्करा नियंत्रण रे न रहिले आखिरे नाना प्रकार रोग देखा देथाय। सबटार बड कथा हला मधुमेह रोगी से पर्यंत तांको आखिरे कोनोसी रोग अछि बोली जानि परंती नाही जे पर्यंत आखि संघातिक क्षतिग्रस्त न होइछि। तेणु मधुमेह रोगी नियमित आखि परीक्षा कराइनेबा निहाती जरूरी।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किसी असुविधा है नहीं। तुम्हें मध्य आज ही निज झियो को HPV

0: देबा पे वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झिया मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

म्यूजिकली ओर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो का एक दिल से दिल तक रे निचे छे आपनक सहित ए सुंदर सकाळ रे सतरे बैसाख मास रे ए धू धू खरा सते जेमिते निया वृष्टि होउची तंटी पाटी सुखी की अठा हे जाउची मनरे प्रश्न आसे आ केते दिन जाय एमिते खरा अस्त व्यस्त हमको करिबो के जानी

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।
3: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चली सुबह सकाळ शो। वर्तमान समय रे स्कूल कॉलेज सब छुट्टी अछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखे सरकार छुट्टी घोषणा करि छन्ते। दिन 11 टारु 3 टा मध्य रे टाण खरा रे बाहर को न बाहरिबा को मध्य परामर्श दिया जाय छि। तेनु आपण माने जो काम रे भी बाहर को बाहरु छन्ते खरा समय रे बाहर को बाहर को इच्छा प्रकाश करंतु नहीं। जदि निहाती दरकारी काम रे बाहरु छंती ताहले 11 टारु 3 टा मध्य रे कोठी जोठी काम करबा को जाउ छंती से जगह रे रही जांतु, विश्राम नियंतु। 3 टा परे ही बाहरी आसंतु निजर घर को, माने जोठु जाइ छंती सेठी के आसंतु। कारण से समयटा खरा बहुत प्रखर थाए, टाण थाए। से समय रे आमे चेष्टा करबा कोठी छाई जगह देखि विश्राम करबा, तबे जई आमे सुस्थ रहिबा, सुरक्षित रहिबा।

वेलकम बैक ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सही दिल तक रे निसी आसी हाजिर हे जाई छी आपन मनन को सम्मुख रे सो स्टार्ट करबा मॉर्निंग मेलोडी यस ए मॉर्निंग को आउट के मेलोडीस करबा आउट के रंगारंग करबा आउट के आमे समस्त इन्वॉल्व थवा ए प्रोग्राम रे ना कोन को छंती ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आम जीवन अमृतमय सौंदर्यमय आनंदमय एक समस्त जानी सुधा केवसी परिस्थिति रे पड़ी आम जीवन को असहाय बोली मन करू आम भाव सतर कण आम आई जीवन सतर कण आम जीवन टाइम दुखमय एत जंत्रणादायक एमती कि आमको पछुक पकई दिए आम जीवन रास्ता

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ट्यून करी छंदी 100.5।

0: एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मु कहतली जीवन रो कथा ए जीवन अमृतमय आनंदमय मनुष्य जहाँ चाहे बेले बेले सहज रे से सब मिली जाए आउ बेले बेले बहुत कष्ट करबाको पड़े बहुत संघर्ष करबाको पड़े तबे सहज रे पाइबा आउ संघर्ष परे पाइबा जेनेस भितरे फरक बहुत रहिछि पार्थक्य बहुत रहिछि देखंतु आपणकर एबे इच्छा हला गोटे भल जिनस खाइबा इमिडिएटली आपणको मिलिगला सेथिरे आपणको जेतिके भल लागिबो जेतिके आत्मसंतोष मिलिबो जेतिके खुशी मिलिबो जदि से जिनसटी पाइबा पई बा से जिनसटी खाइबाको हेले आपणको टिके कष्ट करबाको पडिबो अपेक्षा करबाको पडिबो परिश्रम करबाको पडिबो तबे सेथिरे थाए अलगा एक आनंद अपेक्षार आनंद और से जिनसटी पाइगला परे तार खुशी कहिले न सरे।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मु कहतली आम जीवन कथा जीवन रे दुख आसीबो जंत्रणा आसीबो विभिन्न प्रकार समस्या आसीबो किंतु से समस्या भितरे बुड़ी न जाई से समस्या को सर्वश्रेष्ठ बोली विचार न करी समस्या रे केमिति समाधान बाहरी पारिबो से संपर्क रे चिंता करबा आम पे असाध्य बोली जिनिस किछि पे नाही एथिरे आमे समस्ते एकमत हेबा उचित कले बले कौशले जेमिति भी हो निज लक्ष्य पथरे पहुंचिबा को दृढ़ संकल्प रखिथिबा मनीषटे केबे बी निज जीवन रे को प्रकार रे भी हार मानि पारे नाही लक्ष्य साधन करिबा निमित्त अनेक प्रतिकूल परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा पई मध्य से अंटा भिड़ी थाए शेषरे से सफल हुए आनंद पाए

वेलकम बैक 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक रे निश अच्छी आपनको सहित ए सुंदर सकाळ रे टाइम हे जाय छे स्टार्ट करबा डायल इन लाइव चिट चैट। फ्रेंड्स प्रत्येक कार्यर गोटे समय निरूपण करा जाय थाए गोटे समय निर्घंट करा जाय थाए नहे कि जेमती आम प्रोग्राम देखुनाती गोटे टाइम रे आरंभ होउछि आ गोटे टाइम रे ही शेष होउछि। जदि आमे समय रो बाहर को बाहर जिबा माने समय अनुसार आमे काम न करबा ताहले कोन कोन क्षति हबो आमे कोन असुविधा रे पड़िबा। आज रो डायल इन टॉपिक रहैछि दैनंदिन जीवन रे समय निर्घंटर कौन उपकारिता रही बोली आपण मन करती। जमती आपणकर सका उठवा टाइम एया ब्रेकफास्ट करवा टाइम एया तापर काम करवा टाइम एया पुणी लंच ब्रेक कि समय पुणी आपण कौट कम करपाई समय निर्घंट तापर इवनिंग रे कौन कौन करती राति कौन करती सब गोटे चार्ट गोटे शेड्यूल हो सारी था जो शेड्यूल बंधा हो जाए प्रत्येक दिन तेणु से टाइम भितर आम बेले बेले बाहरी जाऊ टाइम मैनेजमेंट भितर आम बेले बेले एपट सेपट हो जाऊ कौन

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
1: हेलो मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ। किए कहते
1: मैम? मु प्रफुल्ल प्रधान कहती कुआरपाल माणिया मंदिर।
0: आपको स्वागत जनाऊे। कौन कह टॉपिक संपर्क
1: मैम? सर्वप्रथम आज कहे सकाल अर्घ्य तारीख रू धरी आम मर्णिंग मर्णिंग पर्यटन बर्तमान पर्यत जी कार्यक्रम सब जगह तो मुझे शुणुची
0: आज्ञा।
1: मत बेस भल लगे आज अर्घ्यकाल बहुत आनंददायक देखिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इते सकाळ आपण सुनुछंती आम प्रोग्राम फीडबैक दउछंती आपणको मध्यम बहुत धन्यवाद।
1: मोर तो सबुदिन सकाळ 5:30 निश्चित उठिबा। 5:30 निश्चित उठिबा चेष्टा करा जे तुम 5:30 निश्चित उठिबा। मुआ हात धोई रेडियो स्विच टे मारिया एफएम टिके गीत जोड़िए सुनिया भजन तापर हला आमर तंत काम ठीक 6:30 हेले तंत को जीवा हबो।
0: अच्छा,
1: 8:00 जाए तंत गुणा हम 8:00 रु गाधुआ हम ता भितर पाखे नल कूर गाधुआ तो आप मर्णिंग शुणा
0: होता
1: भितर आप प्रत्येक आसीज गाधुआ भितर किसी जलखिया टे कर तापर बस कि 9:00 to 10:00 मोबाइल सह तंत चलद मोबाइल मरा चलद लगे लगे भल न लगे भल आम कर
0: तेबे साड़ी बुणीबा सहित आपण रेडियो सुनुछंती मोबाइल रे कॉल करुछंती आउ कॉल करिबा परे आपण टॉपिक संबंधी कथा भी आम सहित शेयर करुछंती काम भीतर आपण को हाथ चली छी पार्टी भी चली छी।
1: हां मैम, बिजनेस तो चली छी आउ देखंतो 12:00 काम कराउ छी। 12:00 रे उठाबो टिके 10 मिनट खले रेस्ट लेके 12:30 गोटे भीतर खिया हबो टिके रेस्ट ले आइ जे 2:30 12:30 रे कंतु बुझि आबो पूरा 5:00 जाए तंत गुणा हम तापर जो लाइफ टीके भी शुणा हम 6:00 रे पूरा बंद बुला बुली हम टीके 8:00 जाए सांगसाथी मैंने कथा हम भाई मान सहित जोड़ी जोड़ी होगी कथ हम रात 9:00 to 10:00 तापर आस 10:00 रु खा पे कर 10:30 11:00 भर शुआ हम सकाल 5:30 उठा
0: भितर
1: जुआ जीवार जीव आगु प्लानिंग करा दिन इन जीवाक मसिक गोटे दिन संक्रांति दिन मोर छुट्टी मुझे जुआ
0: बुलेजी
1: बंधु बांधव घर जी पूरा टाइम फिक्स मत सारा मोर टाइम फिक्स कौ दिन कौन करा मोर रिजल्ट थी मत जब आज पाखे आगे कौन कर तो कौ दिन गोटे गोटे कर
0: बहुत बढ़िया। आपण एमती समय बांटी देइछन्ते जहा फळर के आपनको कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबा पई पडुनी।
1: नाय मैम, मु सदाल त जुआले जिबी टाइम आसल नि सिले सलाइते ई मासरे याड जिबी ई मासरे ई काम करबी।
0: बहुत बढ़िया,
1: सब टाइम से सदा बेले
0: सुंदर भाबरे मतामत रखिले। आपनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार रहिले मैम।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे निश्चय छे आपनको सहित सीधा सड़क कथा होची आपन टॉपिक ओरिएंटेड आमको निजर मत जणौ छथि हमर टेलीफोन नंबर 0671230315 देखिबा जने कलर को। हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक कल्टी काटी जाए ची, ओके, नो टेंशन, किछी बी टेंशन नवार नहीं जीवन रे, आगो को

रेनबो एसएमएस प्रोग्राम रो लास्ट मेसेज सब करिछंती बहुत श्रोता हमको जे मेसेज करिछंती हम चेष्टा करिछि समस्तक ना प्रोग्राम रे अनाउंसमेंट करबा पई तबे लास्ट मेसेज टी प्रदीप कुमार सामंत सिंघर सेक्टर 12 कटक रु मेसेज करिछंती रमेश कुमार साहू औखम ढेंकानाळ प्रेमानंद महापात्र बांकी कटक रु टुकु टुकुना कंढी माणियाबंध रु कविता मानसी गौरव अनिल अरोरा हनुमान मंदिर रोड मोतीनगर न्यू दिल्ली रु सुनि दउछि आपनको मनपसंद रो एसे संगीत टिकू

0: ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛି। ସରକାର ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦର 28%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 18% କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିପରି ମାର୍ବଲ ଏବଂ ଟ୍ରାବୋଟିନ୍ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର 12%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେବେକି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବ୍ଲକ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 12% ତୁଳନାରେ ଏବେ କେବଳ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ବାଲି ଚୂନର ଇଟା ଓ ପଥର କାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର 12%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: नमस्कार सुनीता, केमिती अच्छा? आओ आजी एठी केमिती?
4: नमस्कार दीदी, आजी मो झियो को 14 वर्ष पूरी ला, तो तारी पाए उपहार नबा को आसी थिली।
3: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य दे दियो। एही टीका आमो झियो मानन को सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करी थाए, एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानन को पाए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करी दे छंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
4: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
3: ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
4: ठीक अछि दीदी।
5: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो माननक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आजि ही www.yuwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
6: କଳାକାର ମୁଁ କଳା ମୋ ଜୀବନ ଧନ, କଳା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। କଳାକୁ ଜୀବନ କରିଥିବା, କଳାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା, କଳାର କଳାରେ କଳଙ୍କିତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କଳାର କଳା ରଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖୁଥିବା ସବୁ କଳାକାର, ଆଉ କଳାକାରର କଳାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର କଳାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳାକାରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୃତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ଜୟଦେ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ FM ରେନ୍ବୋ କଡ଼କ, ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।

जीवन आरंभ करते अमृता अनेक बॉलीवुड फिल्म टीवी धारावाहिक आ विज्ञापन जिंगल अभिनय कर अमिता बॉलीवुड रे जति परिचित न तठर अधिक परिचित जने मॉडल भाबरे आउ अनेक विज्ञापन रो प्रमुख नायिका तांको नै अनेक बहुत बड़ बड़ कंपनी रो ब्रांड रे मध्य होइछि आमे से सब ना नहीं पार्बे जदि ना जापरेंगे अमृता बहुत सुंदर सुंदर विज्ञापन रे अभिनय कर प्रमोशन कर नायिक भाव विभिन्न प्रकार शैम्पू कहु साबुन कहु पेस्ट कहु सब गुड़िकर विज्ञापन से कर सफल आम चर्चा करवा अमृता सहित अमृता राजस्थान जयपुर में 1987 मसीह जन्मग्रहण करते बापा डॉक्टर प्रकाश बक्सी होती नाबार्ड चेयरमैन मुंबई यूनिवर्सिटी कमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर डिग्री हासिल करते अमृता तेज इतने सब बिजनेस पाठ पढ़ी अमृता निज क्यारिययर आरंभ करते अभिनय जदि बिजनेस सहित जड़ित विभिन्न कंपनी प्रोडक्ट प्रमोशन करिवार आरंभ होता अभिनय अभियान कि परवर्त समय से बॉलीवुड को आसते आउ टीवी धारावाहिक भी अभिनेत्री भाव काम कर बॉलीवुड को से शिशु कलाकार भाव आसते परवर्त समय के चलचित्र सह अभिनेत्री भाव कौटि नायिकार भौणी तो कौटि नायिकार सांग यही भूमिकार अभिनय कि नायक भौणी यही अभिनय करते कि अनेक टीवी धारावाहिक से जड़े सह अभिनेत्री भाव सफल होती चर्चा करवा अमृता संपर्क शुणुवा किसी अभिनेता चलचित्र गीत

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछो? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक अभी समय जाए सुनवा केतोटी हिंदी कथाचित्र गीत शुणी दीचु आपको गोटे गोटे गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
3: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त
2: तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
3: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय, एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
2: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
3: ना, किछि असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
2: ठीक अछि दीदी।
4: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.yuwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
5: कथारे कथारे अनेक कथा, गपरे गपरे आईमा पीढ़ी सुआसारी गप, आ गीतरे गीतरे आम हृदय आपण हृदय को छुई जाऊथिबा संगीतर स्वर, से स्वर रे आपण को मनरे भरी जीव अनेक आशा अनेक विश्वास, आ अपसरी जीव सब दुख अवसाद, भूली जीव सब मनर जंत्रणा हृदयर व्यथा, आ मजी जीव संगीतर मीठा बासना रे। आज संगीतमय परिवेश सहित मुंकर साथी बंधु जयदेव आरंभ करिया कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत। ट्यून करते 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक, दिल से दिल तक।

रूपसी प्रिय से पढ़ी ना कौन कुछ नहीं बदलुवा परिवेश परिचय आहारी चौड़ा छाती पर राजरास्तारे सुनली सुनली फुलरे फुले रूपसी सुनारी फुले फुले बर्ती जेतक जौवन दीप्ता तरुणी परी तरु मैंने ठिया रही था सका संज आतिर छाती ग्रीष्म प्रवाह को न माने ग्रीष्मर रौद्र ताप को आरोहणा कर सज हो उदुदिया खरारे स्ट्रीट लाइट रे भी जल्वापी एमती रूपर रंगरे सुनार पेन्था पाथा सहरी लावण्य लाजवती हुई छुलुची से सुनारी हसी हसरी आदरी नवा को हसी हसी आदरी नवा को सभी मन अजौवन प्रकृति जमी सतरे प्राण दे सजाई दे नगर राजरास्ता पहाड़ पर्वत सबकि सुनारे फुलर सुना छड़ा सौंदर्य ना कौन कौन बंधु सुनारी फुलर तरुवर्ती सौंदर्य को उपभोग करने को कह प्राण टे अटक न कहले चलत ना आम भी से सुनारी फुलर सुनाधरा जौवन टे हजिजा मजिजा भिजिजा तार मीठा बास्नारे